तरह मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मा।

जम जंदर न आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई।

तत्र चक्रवर्ती चतार चक्र भुगते स्वयंभ सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते देख तेग फतेह नुसरत बेदरंग याप तज आजनान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार अनुमंत्र दरबारा सत कनव से निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुमरे दरबारा सर्व देवते के नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर आता जग मग जोत बेराज रही श्री अब

गरन सुर स्थित पत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से नेद चारि सनत कुमार सी तपस्ना अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक सिंह भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विष्ण कित वेद और पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित अश्विनी कुमार कित अंशावतार कित काल बस भय है। फिर पिकांबर कित गने ना परत इत भूमि हित हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली शरद रोजोधन से मान धारी भोग भोग भूम भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक दो बची कपट वेश पोषती अनेक दानी वावत है। शीश कहो कहा भयो मल जो पे काढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पे डार्यो रहे उर्द मुख मारते न मुंड ने होरायो आदिश कहो कामना दीन सदा दामना प्रभी ने एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक साओ आंख को चरैया फल फूल को भसैया तथा बन को भ्रमैया और दूसरो न बुक साओ कहाँ भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्ष सोमाटी को बछैया बोल पूछ लीज जो कुसाओ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक साओ नाचोई करत मोर दादर करत।

ना उजले न भावना यकीन दीन कह सके तरत है। जैसे एक स्वंगी कहूँ जोगिया बैरागी बन कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओ गदहा अनेकता पुकार ही। कह भयो जो पिकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही। कहाँ भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई

करता करीम सोई रस करहिम उई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब ही कुबूर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज उई मन सब एक पय अनेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदु न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक

का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कणु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते गच मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज, के तक प्रत।

तेज लीन ताहि दयो भज सब ताहि मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम मैं गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड्डे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चो हजार बूझ हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मडली पहारे विदन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बज हारे पंडित तप

कर मंग न भर मंग न जन मंग न जातंग वैखंग वेखंग जो नि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छे आद अद्वया विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो।

मंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सबूते भविख्य भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग भेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नीय छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न वर्णंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग। अछेदंग वेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न बर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग।

विद्या धरे मानवी हो गहूँ राजसी हो गहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्रसारंग हूँ भद्र रूपंग हूँ।

अनभूत तेज अंश जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात बात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं जयन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात बात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्क ब्याद जय रोक शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोक शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साध दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई कगन होत्र कई पवन हार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र भक्ष नई तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधरा बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बणंत कई करत बांध बांधन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान

जगहों गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार गई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास गई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तद्दवता सपा यतनांत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तद्दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं भरत बान बहु करत।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंजे रचयंग देवा देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमाजे रचयंग सर्व मकीन मका जयराग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जंप है किन्नर जाछ जुअंग जय राग न रंग न रूप न रेख न रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जे जात न बात न मात वितंग जे रचयंग छत्री छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न ताक न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देवा देवा भेव नरंग नरपाल नृपाल करार त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद भुजंग की ये देवा देव सराध पितंग नखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जय तात न मात न प्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप है किन्नर जाछ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास

गुरुगंग जय सोगन भोगन जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय वंदत देवा देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूपा।

लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान परे। जय फूकड़ धर्म सबै तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के

न तात्मात जात है, न पात चिहन वर्ण है, अधिक से कफिक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्व भरण है, जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है, अद्वेग है, अभेग है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठौर में विशेखान मानिए। न जंत्र में न तंत्र में।

है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है।

है, न सीध है, न सूझ है, न ग्राम है, न गाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न चल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है।

मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकांद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग।

नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोध सोध थके महा

अष्टाद चमके भूखंड दमके अथ तिझमके फुंक फनंग जय जय उसी मैखा सुर मर्दन रम कपर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण दुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय उसी मैखा सुर मर्दन भूमा का दल उर्धे दामनी प्रहासन सुछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते रक्ता सुर

खा सुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग। चाचर चमकारंच छुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विप्रदंते जोग जयंते मन।

संकट निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार गण धुंध तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ गादे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपर प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी शस्त्र प्रकार खण आद नील गाद भे चंचलाज खंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठ।

रक्तासुरखंडन शुंभ चक्रत निशुंभ मथे बारज बिलोचन मृतन विमोचन सोच विशोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे शुभ्र सुभासे दुष्ट क्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सीम खासुर मर्दन आद नाथ का दूर्धंग।

चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रत्ये तुम राज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पाजयंते शत्रु मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आत जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आदानंगी अगाध गते बृढ़लाज बिहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आदवृते सुर नर प्रतिपारण।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदन वर्दन बिडाल वदे सरधार विपरखन दुर्जन धरखन लतुल मरखन धरम तुझे धूमराज विदुंसन सुनत चुन।

मित्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन फेक कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र प्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र जहन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंचिज तेज अनभिजताक जल थल महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निषदिन उजरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पानहार कई कोट रुद्र जुगिया दुआर कई वेद व्यास ब्रह्मानंत जय नेत नेत

पच पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रत पार पोखत है जल मैं थल मैं बल मैं कल के नहीं करम विचारे दीन दयाल दया नित दो खंदे खत है पर

खंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमावत भेद गते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करोख रुहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंगेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत सिंह श्री पदमावत पाए आद अनंत अगाध द्वेक्सो भू

दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद्मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है। काहे को टोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत लय है। रोगंते अरसोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु नेक चलाव दघाव तौ तन एक न लाकन पावे। राखत है अपनो कर

अस्पताल रसा जाचे बुजांग सबै सरण्यावै पाए सके नहीं बार प्रभाहू को नित ही नित भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवै। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो भेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन वै जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण गतेव कुरान अभेद निर्पान सब बजहारे भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे याद अनाथ अगाध बेगत वैख जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोदान महाव्रत धारे देश फिरो कर बेस बोधन के जरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग

फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पछमक के पछमी पछाने निज काम है मरा डामंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दीड़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रूह के रूहल मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गाव चिन मचिन के शीस न्याव तिपति थे आये दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव दान को सुरे सदान वान।

जंत्र हुन जात जाके बाप हो न माए दागे पूर्ण प्रभा के सो छटा के अन मानी है। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है नि जंत्र कह के जानी है। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के

सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ का रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है।

काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की वासी है जो कहूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है।

राजन के राजा महासाज हूँ के साज महाजोग हूँ के जोग है धर या धर मचाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावध छाछ कैसी छतरा ने छप्पा कर कैसी छप कालेन्द्र के कूल के हंसनी से सिहारू में ही रसी हो सैना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी गोड चांदनी सी चंदगढ़ कीर तत्ती हरि रही मालती सी फूल के फटक सी गलाद कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमाजी हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के बृतंगी तेरे गीत गायत है बकरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाव काम रूप कमाओ सर्व ठौर मैं विराजे जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र ते अता विनाथ की।

पयो जिसका सब सधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई।

0: कृपान कलगीधर स्वामी धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले
0: कृपान कलगीधर स्वामी धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले।

0: कृपान कलकत्ता स्वामी धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज
1: बोले।

तखत साहब जी दे हेड कथाकार ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी साढ़े विच पुज चुके हैं, वह भी आप जी नूं कथा द्वारा निहाल करनगे। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, ये सारा ही समागम शहीद बाबा जीवन सिंह जी विद्यायक अते भलाई ट्रस्ट चंडीगढ़ वालों करवाया जा रहा है। दो दिन पहला ही तखत साहब जी विखे इस ट्रस्ट वालों बेअंत ही संगतां नूं तकरीबन 2-3 हज़ार दियां संगतां नूं लै करके इस महान स्थान विखे जिहड़ा है वह दर्शन दीदारे करवाए गए, नतमस्तक होने लई बेअंत संगतां नूं लै करके पुजे हन। सो सारिआं नूं असीं जिओ आया आखदे हाँ। तखत साहब जी दे माणयोग जथेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी अते समूह पंज प्यारे साहिबान अते माणयोग डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी तिन्हां वल्लों सारिआं संगतां नूं जिओ आया नूं असीं आखदे हाँ। सो आप जी अगे भाई गुरजीत सिंह जी साणा साहब वाले तो आधे घंटे तक हरजस कीर्तन द्वारा निहाल करनगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सरद विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दया खैला करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी शिफ्त सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच चैन सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
1: वडी उड़े जा वडा नाओ वडी उड़े जा सच न्याओ वडी उड़े जा ने चल थाओ वडी उड़े जाने लाओ वडी उड़े बूझे सब पाओ वडी

0: करे श्रृंगार उच्चे कुके वादा गावे जुदा गावे चार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जती सदावे जुक न जाने छठ पाए करवार सब तो बुरा पे होवे घट न कोई अखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक बोलिया जापे महला पहला
1: वदी सुबज ज्ञान का सच्चा वेखे सोई सबनी छाला मारे।

तात नी खसम ते आए न जनता के वस किछ नाही तदवे की जगत पाया एक नानो तो एक नानो तो मेले का पोतो दिखवाया गुरु कृपा ते जाणिया जिथे तू दाव बुझाया सहज ही सर समाया सहज ही सर समाया।

मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहरोवे प्रभान मले स्थान ने पूजे प्राण अपाख्या का कुठा।